फैल अठ सठ तीर्थ जे नामे त्रिना ही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार, तिन्ने लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रुवे चुभी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बात सच्चे ना। दरबार टुपर खर्च मंगा जबे देता खाहे, दीवाने को कलमे का हमा तुमा में। दर ले लेखा पीड़ छुटे, नान का ज्यों तेल पौड़िया पे ही करना की।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गण जाय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्व सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जनक राज बरताया सत युग आलीना गुर सबदे मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीव साज सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना विसर नाही दातार आपना नाम दे गुण गावां दिन रात नानक चाओ ए विसर नाही दातार अपना नाम दे गुण गावां दिन रात नानक चाओ ए सुन यार हमारे सज्जना एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जै प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया आठ पहर निकट कर जान प्रभ का किया मीठा मन एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगशार
संत रहत सुनहो मेरे पाई, ओआ की महिमा कथन न जाई। त्यक्त जलंग नह जीव मीनंग नह त्याग चात्रिक मेघ मंडल, बाण बेदंच कुरंक नादंग आलबंधन कुसुम वासन। चरण कमल चंत संत नानक आन ना रुचते, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले। राखहु राखनहार दयाला, नानक करके गोले। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपना, तान मान होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसहु कुरसहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जनम जनम दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदा जिस पास बैठिया सोहिया। सबना देश सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदाहु जिस पास बैठिया सोहिया। सबना देश सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सलो संत उदरण दयालं, आसरं गोपाल कीर्तन है। निर्मलं संत संगेना,

संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंद न शरद रोता मूल न मिटाई काम शीतल थी व नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जाना सोना परताप गोविंद निरपाओ पाए माना तोट नाया वै मूल संचया नाम ताना संत जना सेओ संग पाईया वड्डा पोना।

निवास जैसे मीन की ना कटै रुच दीपक प्रगास कटै प्रीत ना पतंग की कुसम सुवास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़त आकाश आस कटै ना बेहंग की कटा कन कूर मूर चात्र कृदय उलास नाद बाद सुन रत कटै ना कुरंग की तैसे प्रिय प्रेम रस रस कर साल संत कटत न त्रिस।

0: पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे बस तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, माण महता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दा संदास तुद आगे बिनवता।
1: सलोक पवन।

पौड़ी वड़ी हो वड़ा पार तेरा मत बा रंग रंग अनेक ना जापन कतबा जिया अंदर जियो सब किस जानदा सब किस तेरे वस तेरे घर भला तेरे करनंद वधाई तुद कर।

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने ओ, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को शाड़ कर।

गोविंद दास तुहार सगल द्वार को शाड़ के गयो तुहार द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दोतां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रह हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार यो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रह हर नाले सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जनिशा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां ये वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तू
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सतसंतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख और तारो तम संसार चरण लग तरिया

चक्षुः कञ्चन पह्यो शब्द गुरु श्रवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख बणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन माणक करे ज्ञान गुर कहयो बीचारे कठो श्रीखंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पश परेत सुर नर पए जिता समुंद सागर नीर भरिया तिते औगुण हमारे दया करो किश मेरे उपाव डुबदे पत्थर तारे जीअड़ा अगन बराबर तपै भीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाण सुख होवै दिन राती दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सा सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह जिस पास बैठिया

तन हमारा मीता रहा। मन बिलास पै साहिब के अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक।

0: बड़े बड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर है माण माता तेज अपना आप जारे सर्व कला भरपूर दिस है जगता नानक दासन दा तुद आ गए बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगते।

गए मशक्कत काले नानक ते मुख उजले किते छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

अमृत षोड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सो भये दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफ तख समदी नूर अर सोहो कुर सोहो चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा औखी घड़ी न देखण देई

सास सास प्रतपाल औखी कड़ी न देखण देई अपना बिरद समल हाथ दे अपने को सास सास प्रतपाल प्रभ स्यों

तन्न हमारा मीत मन बिलास पाए साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई मन विलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्तकाया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाश न भगत वशल अनाथ नाथे शरण नानक पुरखिया चत्ता है बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न भाई सात गुर पूरा फेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया काले बलाई रहाओ राख लिए तिन रखण हार सब व्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ पहे सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का हुए विचारो तित कर गावहु सोहिला सिवरे हो सिरजनहारो तुम गावहो मेरे निरभउ का सोहिला हऊँ वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दन कीमत ना पवै ते सदाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से देह आवन राग आसा महला पहला श्या कर श्या गुर श्या उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विसोए चसया घड़िया पहरा थिती वारी माहो हो आ सूरज एको रोते अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्या नलो पवन चवरो करे सागल बानराए फूलंत ज्योति
कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत फेरी रहाओ सह सताव नयन नन नयन है तोहे कौ सहस मूरत नन एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सह स्तव गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए ते सदै चानण सब मह चानण होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारिंग कौ होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कामे क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार लेव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे राओ साकत हर रस साधन जानिया तन अंतर हमें कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पावै जमकाल सह सर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगुण मेरिया। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिकै बिकखार। माया मोह परम पह पूले, सुतदा रास्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरना, राखो सरना। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा। धन धन।

जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण खत्री शब्दम सूर शब्दम सूदर शब्दम प्राकृत है सर्व शब्दम एक शब्दम जे को

पौड़ी पड़िया होवे गुनाहगार तो उम्मीद साधना मारिए जिहा घल है घलना ते वेहो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरगह गया हारिए पड़िया त्यो मियाँ विचार के विचारिए मोह चलै सो के मारिए मोह चलै सो के मारिए।

पागल मनोरथ पूरी आशा तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो।

उत्तम पद पाया गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उत्तर आया। बड भागी उन मान्या रेद शब्द।

0: खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखान्यो गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजो नि संभव पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगय गैन ब्रह्मान दहन सेतल सुखदातो असंभव उदव्यो पुरख पूरन बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो।
1: जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोह जस बक्ता कल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता धर्म धीर गुर मत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समय उदार अहमेव निवारण महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुटा सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नन खुटा गुरु रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदोया तान्यो गुर अर्जुन कल उचरा तेरा जोग रस जान्यो।
2: पै निरभउ मान्यो लाख में अलख लखायो अगम अगोचर गत गभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सारसो पर परायो गुर गम परमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुचरे ते सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गोर सूर शब्दों में निवार्यो पंचाह निदल्यो सुन सह निज कर सहार्यो हर नाम लाग जाग उदर्यो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुचरे ते जन के कलस दिपायो।
3: सोरठे गुर अर्जन पुरख परमान पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवा

0: जग उदरियो जगत उदारन नाम सतगुर टुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूर।

जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व में।

0: जग और न यहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो हे पद्धत ते मथ चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताछरदा गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदारन बसह संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने आओ भयो तह समसर सोई धरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रताख्य हार।
2: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बच है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुल नाम अमृत मुख लिहो गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
3: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जंपै असुर गे ते भाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दा जिन पायो शतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो।
4: एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सहार सद

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञाने क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधले कहो गोरे अंचल दीजा जन नानक चल है मिलन था।

पौड़ी सतगुरु विटोवारिया जित मिलया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से वंजारिया सतगुरु है बोझ था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा।

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुजग चालिया तां दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना।

पौड़ी चित्तेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वडमेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगण भिख ना पाएंदा दर मंगण भिख ना पाएंदा।